हमें दादो समुद्र का किसी अकल से का था किसे या आज नगंगार बेचारा है